0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: किसी को माफ करना बहुत हिम्मत का बड़े दिल वालों का काम है. आफ्टर ऑल हर फीलिंग की जड़ तो दिमाग ही है ना. इसलिए बस एक सिंपल सा उसूल बना लें, जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट. माफ करें और भूल जाएं. इतना हमेशा याद रखें कि दिल में नफरत और बदले की फीलिंग को पाल कर रिश्ते कभी मजबूत नहीं बन सकते. इसलिए अपनी और बाकी सबकी खुशी के लिए जस्ट स्टिक टू दोज थॉट्स दैट गिव यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड उन थॉट्स को निकाल कर बाहर फेंक दें जो आपका दिल दुखाती है.

कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज। सैंडी ग्रीनबर्ग नाम का एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, पर पुअर फैमिली से था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने को गया, बट अनफॉर्चुनेटली कोई आंख की डिजीज हो गई, जो टाइम पर डिटेक्ट ना होने की वजह से सैंडी की आइट साइट चली गई। पर पढ़ाई उसने तब भी जारी रखी। पता कैसे? उसके हॉस्टल का रूममेट रोज रात को उसे टेक्स्ट बुक्स पढ़कर सुनाया करता था। अच्छा, इस सिचुएशन में अब खुद को रखें, अब खुद को ऑनेस्टली आंसर करें कि अगर आपके रूममेट पर कोई ऐसी मुसीबत आती, क्या आप अपना वक्त देते उसे, पढ़ते टेक्स्ट बुक्स रात को उसकी मदद के लिए? रोज अपने आप से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि मैं कैसे किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ। हाउ कैन आई गिव बैक टू अदर्स? चाहे आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, देयर विल ऑलवेज बी एन अपॉर्चुनिटी टू गिव बैक। आप किसी को वक्त देकर मदद कर सकते हैं, कई बार पैसा देकर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली गिव योरसेल्फ योर हार्ट एंड सोल टू लिव स्मार्टली फॉर योर ओन सेल्फ एंड फॉर अदर्स टू।

0: ऑफ पंजाब दे चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
1: आहो सुनदे यार रोज रेडियो ते
2: सुनो साडे YouTube चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।
3: दिल और प्यार का रिश्ता तो बहुत पुराना है। जिस इंसान ने आपके दिल में घर बना लिया, फिर उससे खूबसूरत आपको अपने आसपास और कौन नजर आएगा। जहां तू है वहां मंजर हसी होता है, बाहर आए तो तू है यकीन होता है। तेरे दामन की हवा लेकर महकता है चमन, तेरी नजर का असर जानशी होता है।

अपने मनपसंद साथी का साथ हो तो हर मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसानी से कट जाता है। ये उदासियाँ, ये बेबसी जो तुम हो पास कुछ नहीं, दिल में मचल जाएं कहीं वो ख्वाहिशें जगा दो। अनजान राहें, अजनबी सफर, कब तक मैं रहूं तन्हा, कट जाएगा हर रास्ता जो तुम कदम से कदम मिला लो। फिजा महके खुशबू से चांद तारे उतर आए वहीं, मेरे दिल के अंधेरों में कहीं यूं महफिलें सजा दो। मेरी जुस्तजू हो मेरी आरजू, ना जुदा रहा करो मुझसे, मुझे इश्क है हाँ तुमसे, अब जरा सा मुस्कुरा दो।

मंजिल थी, गिरे और गिर गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की बुझाने की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो जी, यही डिटर्मिनेशन, ये जिद ही है जो आपको जीत की तरफ ले जाती है। रास्तों पर तो सभी चलते हैं, लेकिन जो अपनी जिद से, लगन से नया रास्ता बना दे, ही इज द चैंपियन इन द ट्रू सेंस। वेल, हम भी इस सफर के आखिरी पड़ाव तक पहुंच गए हैं, बट बिफोर आई से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, लेट्स एंजॉय दिस नेक्स्ट नंबर टुगेदर।

0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: मैंने रिसेंटली एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जर्नल पढ़ा जिसमें राइटर ने लिखा था कि मैं ऑफिशियली बड़ा होने से रिजाइन करता हूँ और वापस एक 8 साल के बच्चे वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ। वो जिंदगी जब लाइफ बेहद सिंपल थी, फुल ऑफ कलर्स, लॉट्स ऑफ फन, व्हेन लाइफ टर्न्ड इट लुक्ड लाइक अ फेयर और हर इंसान अच्छा और ऑनेस्ट लगता था। कोई डिप्रेसिंग न्यूज, बीमारी, गॉसिप नहीं थी, तो बस प्योरिटी, स्माइल्स एंड ड्रीम्स। याद आ गए ना वो सारे पुराने दिन, क्योंकि आज भी उम्र चाहे हमारी बढ़ गई है लेकिन दिल में एक बच्चा तो अभी भी कहीं छिपकर बैठा है।

0: ਚਲੋ ਹੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ ਪਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ।
1: किसी ने राइटर एर्मा से पूछा कि अगर उन्हें लाइफ फिर से मिली तो वो कैसे जीना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा कि अगर सच में ऐसा हुआ तो वो बात कम करेंगी, सुनेंगी ज्यादा, किसी भी चीज के टूटने पर चिल्लाएंगी नहीं सब पर, और अपनी जिंदगी में सॉरी, थैंक यू एंड लव यू इन शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहेंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट, हर एक मिनट, हर एक लम्हे को फील करके जीना चाहेंगी। वेल, आई एम श्योर कि अगर आप भी अर्मा की बातों के साथ इत्तेफाक रखते हैं तो आप अपनी लाइफ में ये चेंजेस आज से ही लानी शुरू कर देंगे बिफोर इट गेट्स टू लेट।

0: ਆ ਕੁੜੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
1: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
2: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ।
3: अक्सर हम लोग एक भ्रम, एक अलग ही दुनिया में जीते हैं, जो सच्चाई और रियलिटी से बहुत अलग है। माय वर्ल्ड, माय हैप्पीनेस, माय लाइफ, इनफैक्ट माय, मैं, मेरा, यहीं तक सीमित है हमारी दुनिया। पर जरा सोचें कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। डूबती हुई कश्ती को पहुंचा दो किनारे पर, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा।

0: पंजाबी चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
1: एह सुनदे यार रोज रेडियो ते
2: सुनो साडे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।
3: जब हम लोग अपने पर टाइम स्पेंड करने की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ वो टाइम इंक्लूड करना चाहते हैं जो हम अपनी हॉबीज पर स्पेंड करते हैं, साथ ही साथ कुछ वक्त बिताएं सच में अपने सेल्फ एनालिसिस पर भी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें खुद को अपनी वीकनेसेस का पता ही नहीं होता और अगर ऐसा है तो सुधार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, क्योंकि जिंदगी भर बस यूं ही गलती करते रहे, धूल थी चेहरे पर और आईना साफ करते रहे।

0: कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज।
1: स्मार्टली जीना है तो जिंदगी में कोई मकसद या एम जरूर होना चाहिए, और जो लोग अपनी जिंदगी का मकसद नहीं जानते हैं, जिंदगी उनके लिए सिर्फ एक कुआं है जहां आज नहीं तो कल वो गिरेंगे ही गिरेंगे। और सिर्फ एम नहीं, उस एम को अचीव करने के लिए चाहिए ढेर सारा पॉजिटिव एटीट्यूड, बहुत सी पॉजिटिव सोच, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इस बात से सहमत होंगे कि मेरी तकदीर को बदल देंगे मेरे पुख्ता इरादे। मेरी किस्मत नहीं मोहताज, मेरे हाथ की लकीरों की।